सु रेडियो नेपाल हिन्ना नेपाल प्रहरीसे काभ्रे पलाञ्चोक जोङला नमबुद्ध नगरपालिका नि बुच्चा कोटरी तिलमा ताबा बस दुर्घटनाला च्याबा साइबारी शोभा समिति से गे लबारी ती बामुला प्रहरी प्रधान गेजाङ से तिनी होजा दुर्घटनाला च्याबा साइबारी नेपाल प्रहरी प्रदेश गेजाङ काभ्रेला एसएसपी कमल थापाला थुतबोन्डी मेन्दो डु सदस्य च्याबा साइबा समिति शोभा हिला बनेपा ग्याम रोसी खार्पा चोक ग्यार निबान लबा बस सडक घ्यालम ग्याम ग्यार्जा सोम मिटर मार ताइसी दुर्घटना तामा बसरी क्रेबा मेन्दो ब्रे मिनी घटना ताबा घ्लारिन सी बामुबा दुर्घटनारी घाइते ताबा मेन्दो चुई ढुला धुलीखेल अस्पताल जी मान लाबन मुला समिति से घटनाला च्याबा साइबा लासी निस्रा नाङ्री प्रतिभेदन पिनबारी प्रहरी प्रधान गेजाङ से पाङबा मुला दुर्घटना ग्याम रोसी गाउँपालिका ढुला निश्चुई सोम दिङला मेक बहादुर तामाङ होजान ग्लाला गाचुई गा दिङला राजु तामाङ तेन निश्चुई गा दिङला इन्द्र बहादुर तामाङ रोसी निसला सोमचुई गा दिङला फुल माया तामाङ होजानक लाला डुचुई दिङला माया तामाङ रोसी ब्रेला डुचुई दिङला प्यारी माया तामाङ दैलेख धिम तासी त्रिनेत्र दल गण भकुण्डे भेसिरी गेलाबा नेपाली सेनाला सोमचुई दिङला अमलदार बम बहादुर भण्डारी थिएन सिन्धु पालचोकला घ्याङ लेक गाउँपालिका भ्ली धिम ताबा निचुई नि दिङला सुमी तामाङ घटना ताबा घ्लारिन शिवा मुलाबिसी जोङ प्रहरी घेजाङला सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन विष्टसे सुङबा मुला विष्टसे सुङबा अनुसार दुर्घटनारी घाइते ताबा मेन्दो चुई ढुला धुलीखेल अस्पताल जी मान लाबन मुला बनेपा ग्याम रोसी गाउँपालिका क्यार निबान लाबा बस नमो बुद्ध गाउँपालिका नि बुच्चा कोट ला सेल्फी डाँडा ग्याम मार ताइबा मुबा सूचना थिएन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिनासे कला सेमलेङ गोई थिएन रिमछिम युल्ला गोसे बासे ताबासे चुदा सोना लातोबारी मोकोनला भङ तादौला विशे सुङबामुला गोर्खा पत्र घेन्दुनसे तिनी याम्बुरी सेङबा घेखोरी लेङमो थान्सिबान ब्लोन तिमिल सिनासे युल्ला भौतिक पूर्वाधार थिएन नोर सूचक छ्याम गोई सेमलेङ थिएन रिमछिम कोङबा आता दे धोना युल्ला समृद्धि ताबारी आखाम विशे सुङबामुला लोन तिमिल सिनासे रेङबा दोङराप

ये रेडियो नेपाल है, हफीज़ खान से उर्दू में खबरें सुनिए हैं। नेपाल पुलिस ने ज़िला काबरे प्लांचौक के नमोबुद्ध नगर पालिका वार्ड नंबर 2 बुच्चाकोट में गुज़श्ता रोज़ पेश आए बस हादसे के हकायक मालूम करने के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। पुलिस हेडक्वार्टर ने आज उस हादसे की तहकीकात के लिए नेपाल पुलिस सूबाई दफ्तर काबरे के SSP कमल थापा की क़यादत में 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। पुलिस हेडक्वार्टर के मुताबिक कमेटी को हादसे की असल हालत, वजूहात और जिम्मेदार की पहचान और हकायक की छानबीन करके 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। बनेपा से रोशी खरपा चौक की जानिब जाती हुई B3K8398 नंबर की बस बेकाबू होकर सड़क से तकरीबन 300 मीटर नीचे गिरने से बस में सवार मुसाफिरों में से 8 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। जिला पुलिस दफ्तर के तलाती अफसर DSP रमीन विस्टर ने बताया कि हादसे में पड़कर रोशी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 के 73 साल मेघ बहादुर तामंग, 55 साल राजू तामंग और 75 साल इंद्र बहादुर तामंग, रोशी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 की 34 साल फुलमाया तामंग और 60 साल माया तामंग, वार्ड नंबर 8 की 60 साल प्यारी माया तामंग, सिंधुली के घ्यांगलेक गांव पालिका वार्ड नंबर 4 की 22 साल सुमी तामंग और दैलेक के नेपाली फौज के त्रिनेत्र बटालियन भकुंडे बेसी में अमलदार के तौर पर कारफर्मा 30 साल बम बहादुर भंडारी की जायवकवा पर ही मौत हो गई थी। DSP बिस्टर के मुताबिक हादसे में पड़कर जख्मी होने वाले 16 अफराद का धुलीखेल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वज़ीर नशरियात व इत्तला डॉक्टर बिक्रम तमिसना ने कहा है कि फ़न सकाफ़त और ज़बान व अदब किसी भी मुल्क की ताकत और पहचान की बुनियाद होने की वजह से इनके तहफ़ और फ़रोग़ के बग़ैर खुशहाली नामुकम्मल होगी। गोरखा पत्र संस्थान के ज़रिए आज काठमांडू में एहतमाम करदा एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुल्क के मादी बुनियादी लवाजमात और इकतसादी अलामत के साथ साथ ज़बान व अदब और सकाफ़त की मुतवाज़ी तरक्की भी ज़रूरी है। उस मौके पर तारीख़ हामिल सरकारी और अवामी नशरियाती इदारे और अदबी और सकाफ़ती इदारे मालियाती तौर पर कमज़ोर बनते जाने पर वज़ीर तमिलसरा ने तशवीश का इजहार किया। गोरखा पत्र संस्थान को मज़ीद तहक़ीक़ी पेशावराना और तकाबली इदारे के तौर पर तरक्की देने में हुकूमत पर अज़्म रहने का तज़किरा करते हुए वज़ीर तमिलसरा ने यह वाज़ह किया कि ज़राए अबलाग को फराहम किए जा रहे अवाम फलाही इश्तहारात को बंद नहीं किया गया है। वजारत ज़रात और जंगलात व माहौलियात के मुताबिक असल खुरदनी बालियों की कलील तर रियायती कीमत और कलील तर ख़रीदारी कीमत कायम करने के लिए हिदायत जारी करते हुए बाली लगाने से कबल ही रियायती कीमत मुकर्रर करने के इंतजाम को नफाज में लाया गया है। वजारत के मुताबिक हुकूमत के 100 नुकाती इंतजामी असलाही प्रोग्राम के तहत असल खुरदनी बालियों की कलील तर रियायती कीमत के तायुन से मुतालिक काम अंजाम पा गया है, जिसके लिए कलील तर रियायती कीमत और कलील तर ख़रीदारी कीमत के तायुन से मुतालिक हिदायत 2082 जारी की गई है। वजारत के मुताबिक ये हिदायत गुज़श्ता बैसाख 16 गते काबीना सती फैसले से मंजूर होकर वजारत कानून इंसाफ और पार्लियामानी उमूर में दर्ज किया गया और वजारत की वेबसाइट के ज़रिए मंजर आम किया गया है। मुल्क के अहम इंतजामी मरकज़ सिंह दरबार वाके मरकज़ी कैंटीन में घुन लगी हुई चने की दाल, सड़ा हुआ बादाम और टूटा अंडा दस्तियाब होने के बाद महकमा तजारत व फराहमी और तहफ़ुज़ सार्फीन ने कैंटीन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। ये कैंटीन GNB कैफे ग्रुप के ज़ेर एहतमाम चलाया जा रहा है। उसी तरह महकमा ने आज ही भक्तपुर के चांगू नारायण नगर पालिका वार्ड नंबर 3 वाके जय छुमा गणेश बुद्ध पीने का पानी प्राइवेट लिमिटेड को बगैर खरीदारी बिल के पाए जाने के बाद उस पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। काठमांडू वादी जराइम तहकीकाती दफ्तर की टीम ने चेक बाउंस और दगाबाजी के कसूर में शेफ संतोष शाह को गिरफ्तार किया है। काठमांडू वादी जराइम तहकीकाती दफ्तर के SP शरद कुमार थापा छेत्री ने बताया कि ज़िली अदालत काठमांडू से इजाज़त लेकर शाह को गुज़श्ता रात मोहतरी से गिरफ्तार करके आज काठमांडू लाया गया। SP छेत्री ने बताया कि शाह को गैरी धारावा के एक रेस्टोरेंट खरीदते वक्त चेक बाउंस करके दगाबाजी करने के कसूर में ज़िली अदालत काठमांडू की इजाज़त पर गिरफ्तार करके काठमांडू लाया गया है।
एक्सकावेटर से फेंके गए बालू में दब जाने से एक मजदूर की मौत हो गई है। इलाकाई पुलिस दफ्तर गढ़वा के मुताबिक दांग के देवखरी वाके कालाकाटे सिकटा डाकिया सड़क हिस्सा की तामीरी मकाम में बिटुमिन तैयार करने की जगह पर एक्सकावेटर ऑपरेटर अनिल कुमार थारू के जरिए फेंके गए बालू में दब जाने से गढ़वा गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 के 45 साल लालमणि यादव की मौत हो गई है। उस जगह पर मजदूर नहीं होने के गुमान में थारू ने बालू फेंका था। धनकुटा में भरवा बंदूक की सफाई के दौरान बंदूक चल जाने से एक शख्स की मौत हो गई है। धनकुटा के महालक्ष्मी नगर पालिका वार्ड नंबर 9 खाड़े कठहरे के अंदाजन 47 साल रामकृष्ण थापा सफाई के दौरान बंदूक चल जाने से शदीद जख्मी हो गए थे। जिला पुलिस दफ्तर धनकुटा के मुताबिक जख्मी थापा की इलाज के दौरान मौत हो गई। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा कला साहित्य भाषा संस्कृति कोनो राष्ट्रक शक्ति आ पहचानक आधार भेला कारणे ओकर संरक्षण आ प्रवर्धन बिनाक समृद्धि अपूरा हेबाक बात बतौलनि अछि। गोरखापत्र संस्थान द्वारा आई आयोजित मधुपर्क सम्मान 2083 कार्यक्रम में ओ देशक भौतिक पूर्वाधार आ आर्थिक सूचकांक संगे भाषा साहित्य आ संस्कृतिक सुदृढ़ विकास सेहो समानांतर रूप में आवश्यक रहल बतौलनि। ओ पछिला समय सामाजिक संजाल साहित्यिक अभिव्यक्तिक महत्वपूर्ण माध्यमक रूप में विकसित होइत गेल उल्लेख करैत बदलैत प्रविधिक संगे साहित्यक प्रस्तुति आ पहुँचक नया आयाम खुलैत गेल बतौलनि। संचार मंत्री तिमल सिन्हा राजनीतिक क्षेत्र साहित्य कला के महत्व के अपेक्षित प्राथमिकता सकल धारणा व्यक्त कलन। ओ लंबा इतिहास रहल सरकारी तथा सार्वजनिक संचार संस्था तथा साहित्यिक आ सांस्कृतिक संस्था सब आर्थिक रूप में कमजोर बनित गेल प्रति चिंता व्यक्त करैत उन संस्था के नया जीवन देव आर्थिक रूप में सबल बनाब आवश्यक रहल बतौलनि। गोरखापत्र संस्थान के और ओजपूर्ण व्यावसायिक आ प्रतिस्पर्धी संस्था के रूप में विकास करबाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल उल्लेख करैत ओ संचार माध्यम के उपलब्ध करबैत आयल लोक कल्याणकारी विज्ञापन नहि रोकबाक स्पष्ट कयलनि। कार्यक्रम में मधुपर्क सम्मान 2083 अंतर्गत पद्म तर्फ वरिष्ठ साहित्यकार यादव खरेल, कद तर्फ वरिष्ठ कथाकार भावपंथी तथा मधुपर्क प्रतिभा सम्मान सँ डॉक्टर गीता त्रिपाठी के सम्मान कयल गेल छल। हुनका सबके सम्मान पत्र सहित 50,000 नगद प्रदान कयल गेल गोरखापत्र संस्थान जनौलक अछि। मधुपर्कक पूर्व सम्पादक कपिल घिमरे के सेहो कार्यक्रम में सम्मान कयल गेल छल। सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार यादव खरेल सूचना प्रविधि आ कृत्रिम बौद्धिकताक तीव्र विकासक संगे साहित्यिक सृजना तथा पठन संस्कृति में ह्रास होबय लागल चिंता व्यक्त कयलनि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री खरगराज पौड़ेल नेपाल के आरोग्य पर्यटनक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यक रूप में स्थापित करबाक बात बतौलनि अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड आ स्पा संघ नेपालक आयोजन में विश्व आरोग्य दिवसक अवसर पर आई आयोजित कार्यक्रम में ओ अगला 10 वर्ष के आरोग्य दिवस के रूप में मनेबाक तैयारी भ रहल जानकारी दलनि। मंत्री पौड़ेल आरोग्य दशक मनेबाक लेल आवश्यक नीति तथा रणनीति निर्माण प्रक्रिया आगू बढ़ रहल आरोग्य पर्यटन अध्ययन के होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान नाथम मार्फत स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह धरि विस्तार करबाक तैयारी भ रहल बतौलनि। मंत्री पौड़ेल नेपाल आध्यात्मिक भूमि भेलाक कारणे एहिठामक हिमाल नदी वन जंगल आ प्राकृतिक वातावरण सँ मनुष्य के आत्मिक शांति सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करबाक बात बतौलनि। कार्यक्रम में स्पा संघ नेपालक अध्यक्ष सुरेश पुरी विश्वभरि लगभग 70 करोड़ व्यक्ति आरोग्य पर्यटन सँ आबद्ध रहल उल्लेख करैत स्पा के केवल विश्राम आ मनोरंजन के माध्यम के रूप में मात्र नहीं भर रोगक रोकथाम आ स्वस्थ जीवन शैलीक महत्वपूर्ण अंगक रूप में बुझबाक बात बतौलनि। नेपाल पर्यटन बोर्डक नियमित निर्देशक लक्ष्मण गौतम स्पा के इतिहास बेल्जियम के तातोपानी के कुंड सँ जुड़ल के स्मरण करते नेपाल में आयुर्वेद जीवन शैली के अभिन्न हिस्सा रहल बतौलनि। ओ स्पा क्षेत्र के सम्मानित व्यावसायिक पेशा के रूप में विकास करब समयक आवश्यकता रहला कारणे सरकार ओके तैयारी कयल जेबाक बात पर जोर दलनि। सार्वजनिक लेखा समिति 7 खरब 55 अरब

78 अरब 53 करोड़ 64 लाख बेरोज दिखलक अछि। संगे प्रदेश सरकार मातहत 33 अरब 96 करोड़ 90 लाख, स्थानीय तह मातहत 2 खरब 20 अरब 47 करोड़ 26 लाख टका बेरोजी अछि। एहिना समिति आम संस्था मातहत 1 खरब 22 अरब 19 करोड़ 42 लाख टका बेरोजी रहल जनौलक अछि। महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन अनुसार अर्थ मंत्रालय मातहत 37 अरब 63 करोड़ 31 लाख टका बेरोजी रहल अछि आ साबिकक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय मातहत 7 अरब 10 करोड़ 33 लाख टका बेरोजी अछि। एहि तरह साबिक के भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय मातहत 1 अरब 53 करोड़ 66 लाख, वन तथा वातावरण मंत्रालय अंतर्गत 1 अरब 34 करोड़ 57 लाख, साबिक के संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय मातहत 1 अरब 16 करोड़ 68 लाख टका बेरोजी अछि। सरकार प्रदूषित हवा हटाकर स्वच्छ वातावरण कायम करबाक योजना आगू बढ़ौलक अछि। नेपाल स्वच्छ हवा तथा समृद्धि परियोजना नेपाल क्लीन एयर एंड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट एंड कैप आबयवला आर्थिक वर्ष 2083-84 सँ कार्यान्वयनमे आनयवला तैयारी कयलक अछि। नेपालमे वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रक हरित रूपांतरण तथा स्वच्छ हवा प्रवर्धनके लेल लगभग 8 अरब 71 करोड़ 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर बराबरके परियोजना सञ्चालन करबाक तैयारी शुरू कयलक अछि। विश्व बैंकक 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहूलियतपूर्ण ऋण आ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान स्वीकृत भेलाक बाद परियोजना कार्यान्वयनके मार्ग खुलल अछि। वातावरण विभाग महानिर्देशक ज्ञान राज सुवेदी नेपाल स्वच्छ हवा तथा समृद्धि परियोजना एन कैप सँ देशक वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन अनबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। हुनका अनुसार परियोजना विशेषकर उद्योग क्षेत्र के स्वच्छ ऊर्जा में रूपांतरण करबा में सहयोग पहुँचबाक कारणे औद्योगिक प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी अयबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। सुवेदी अंतर्देशीय वायु प्रदूषण विशेषकर पड़ोसी देश सँ आबयवला प्रदूषण नियंत्रण के लेल बहुपक्षीय तथा अंतर्देशीय समन्वय आवश्यक रहल बतौलनि। केंद्रीय बाल न्याय समितिक सचिवालय आई नेपालगंज में आयोजन कयल बाल न्याय सुदृढ़ीकरण संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में बाल न्याय प्रणाली में अवलंबन कयल जाय वाला विधि संबंध में छलफल कयल गेल अछि। कार्यक्रम में उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज इजलासक मुख्य न्यायाधीश वामदेव गेवाली बाल न्याय के बाल संरक्षण के विषय के रूप में प्राथमिकता में राखल जेबाक बात जोर दैत बाल बालिका द्वारा भेल कयल गलत काज के अनुसंधान करित काल संवेदनशील हेबाक बात बतौलनि। ओ कानूनी विवाद में पड़ल बाल बालिका के समाज में पुनर्स्थापना करबाक लेल सहकार आ समन्वय के आवश्यकता रहल बतौलनि। सर्वोच्च अदालतक रजिस्ट्रार एवं केंद्रीय बाल न्याय समिति के सदस्य सचिव मान बहादुर कार्की किछ अदालत में बाल इजलासक अभ्यास शुरू भेल जानकारी दैत बाल न्याय में विगत सँ सुधार होइत आयल बतौलनि। जिला अदालत बांके के न्यायाधीश दीप कुमार दहाल बाल बालिका में अपराध करबाक वाणी के विकास नहीं होमय देबाक लेल परिवार आ समाज सजग हेबाक बात पर जोर दैत बाल सुधार गृह के बाल मैत्री बनेबाक लेल भौतिक संरचना स्रोत साधन के पर्याप्त हेबाक बात धारणा रखलनि। केंद्रीय बाल न्याय समितिक सचिवालयक उप सचिव घनश्याम सुवेदी बाल न्याय के विषय में एक चुनौती अनुभव आदान प्रदान भेल बतौलनि। मध्य प्रदेश सरकार बजट फ्रीज हेबाक समस्या न्यूनीकरण करबाक लेल अगला आर्थिक वर्ष सँ नया रणनीति अपनाबय लागल अछि। प्रदेशक अर्थमंत्री युवराज भट्टराय विगत में अनुपयुक्त तथा कार्यान्वयन नहि कऽ सकल योजना बजट में समावेश कयला पर भारी रकम खर्च नहि भऽ कऽ फ्रीज हेबाक समस्या देखल गेल बतौलनि। अगला आर्थिक वर्ष सँ एहन समस्या नहि आबय देबाक लेल बजट तैयारी के समय में नया रणनीति अपनाबय लागल ओ बतौलनि। ओ ई समस्या समाधानक लेल यथार्थ परक खर्च नहि कयल जा सकबाक हिसाबे अगला आर्थिक वर्षक बजट आनय लागल दावी कयलनि। आबयवला 2083-84 के बजट तैयारी अंतिम चरण में पहुँचल जानकारी दैत ओ बजट निर्माण प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाओल गेल बतौलनि। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार अगला अखाड़ 1 अते सँ बजट सार्वजनिक कयल जेबाक कारणे अर्थ मंत्रालय तैयारी के अंतिम रूप देलक अछि। हाल नेपाल में उपल्ला वायुमंडल में रहल पश्चिमी न्यूनीय चाप रेखा स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुक समेत आंशिक प्रभाव रहल अछि। कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेशक हिमाली पहाड़ी भूभाग में साधारणतया बादल तथा बाकी भूभाग में आंशिक बादल लागल अछि। कोसी प्रदेशक बहुत स्थान में तथा बागमती गंडकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशक एक दू स्थान में हल्का से मध्यम वर्षा भऽ रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि।
कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित बागमती, गंडकी प्रदेशक हिमाली आ पहाड़ी भूभाग के

0: थोरै स्थानमे बाँकी पहाडी हिमाली भूभाग एक दुटा स्थानमे मेघगर्जन ठनका सहित मध्यम वर्षा हिमपातके सम्भावना रहल अछि। कोशी प्रदेशक एक दू स्थानमे भारी वर्षाके सेहो सम्भावना रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनक राजधानी बेजिंग में आरोही तथा संघीय सांसद मेंगमा ग्याबू शेरपा सहित नेपाल आ चीन लगभग 50 गोटे सगरमाथा आरोही सम्मानित भेला अछि। 73 सगरमाथा दिवस के अवसर पर बेजिंग में स्थित नेपाली राजदूतावास काल्हि साँझ आयोजन कयल नेपाल चीन सगरमाथा माउंट एवरेस्ट एडवेंचर फेस्टिवल में आरोही सब सम्मानित भेल नेपाली दूतावास जनौलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनने छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल, नेपालको समावेशी आवाज।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। एक वर्ष के भीतर 1040 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने का ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार आगामी वर्ष 8 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से नेपाल स्वच्छ वायु एवं समृद्ध परियोजना करेगी लागू। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और निर्माण सामग्री के महंगी होने से सुदूर पश्चिम के सड़क परियोजनाएं हुई प्रभावित और अमेरिका और ईरान के बीच आज समझौता हो सकता है, प्रमुख मध्यस्थकर्ता पाकिस्तान का कथन। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष के भीतर देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को 5,335 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऊर्जा जलस्रोत एवं सिंचाई मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक किए गए वार्षिक विकास कार्यक्रम के अनुसार एक वर्ष के भीतर अतिरिक्त 1,040 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी। निर्माणाधीन तथा निर्माण के अंतिम चरण में पहुंचे जल विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और निजी क्षेत्र द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं को भी आवश्यक सहजीकरण प्रदान कर निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी आर्थिक वर्ष में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत को 511 किलोवाट घंटे तक पहुंचाने तथा विद्युत हानि को 12.03% तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार लघु एवं छोटे जल विद्युत परियोजनाओं से 43 मेगावाट तथा सौर ऊर्जा से 99 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ने का कार्यक्रम है। मंत्रालय का मानना है कि जल विद्युत विकास से न केवल राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति होगी बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विकास को भी गति मिलेगी। सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी हिस्सेदारी के वितरण के आधार और ढांचे के बारे में संबंधित पक्षों को जानकारी देते हुए उसी के अनुसार क्रियान्वयन करने का आग्रह किया है। विद्युत विकास विभाग ने रॉयल्टी वितरण का हिस्सा निर्धारित करने के लिए परियोजना की भौगोलिक स्थिति, प्रभावित स्थानीय निकायों के क्षेत्रफल और जनसंख्या को मुख्य सूचक के रूप में अपनाते हुए उसी अनुरूप व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। विभाग के अनुसार भौगोलिक स्थिति को 50% प्रभावित क्षेत्र के क्षेत्रफल को 25% तथा प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या को 25% भार दिया गया है। इसी प्रकार भौगोलिक स्थिति के आधार पर क्षेत्रों को मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र तथा परियोजना के आसपास के ऊपरी और निचले तटीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या को भी मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विभाग द्वारा निर्धारित सूचकों के अनुसार जिन जिलों में अधिक जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन्हें अधिक रॉयल्टी प्राप्त होगी, जबकि कम परियोजनाओं वाले जिलों को अपेक्षाकृत कम रॉयल्टी मिलेगी। विभाग के अनुसार वर्तमान में 191 परियोजनाएं विद्युत उत्पादन कर रही हैं, जबकि 264 परियोजनाओं को विद्युत उत्पादन का लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। सरकार ने प्रदूषित हवा को कम करके स्वच्छ वातावरण बनाए रखने की योजना आगे बढ़ाई है। नेपाल स्वच्छ वायु एवं समृद्ध परियोजना को आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 से लागू करने की तैयारी की जा रही है। नेपाल में वायु प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक क्षेत्र के हरित रूपांतरण तथा स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8 अरब 71 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत वाली परियोजना संचालित करने की तैयारी शुरू की गई है। पर्यावरण विभाग के महानिदेशक ज्ञान राज सुवेदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि नेपाल स्वच्छ वायु एवं समृद्ध परियोजना देश की वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाएगी। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ निर्माण सामग्री की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण सुदूर पश्चिम की सड़क परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। सड़क डिवीजन कार्यालय महेंद्र नगर के अंतर्गत संचालित अधिकांश सड़क ब्लैक टॉप परियोजनाओं का कार्य आगे नहीं बढ़ पाने से चालू वित्तीय वर्ष का पूंजीगत व्यय भी प्रभावित होने की आशंका है। सड़क डिवीजन कार्यालय महेंद्र नगर के सूचना अधिकारी इंजीनियर हरि प्रसाद जोशी के अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में मूसेपानी खोला पुल और दोदा देखत भूली पुल का निर्माण पूरा होकर हस्तांतरण कर दिया गया है, लेकिन सड़क डामरीकरण से संबंधित कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। ठेका समझौतों में मूल्य वृद्धि समायोजन की व्यवस्था न होने के कारण लगभग 70% परियोजनाएं ठप हो गई है। इसी प्रकार वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कैलाली और कंचनपुर के 9 सड़क परियोजनाओं में डामरीकरण का कार्य भी रोक दिया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलिकम को 4G

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। काभ्रेपलांचोक जिले की नमो बुद्ध नगर पालिका के बुच्चाकोट क्षेत्र में कल हुई बस दुर्घटना में मृत 8 लोगों की पहचान हो गई है। ये जानकारी जिला पुलिस कार्यालय काभ्रेपलांचोक ने दी है। मृतकों में काभ्रेपलांचोक

0: एक ही नमो बुद्ध नगर पालिका दो बुच्चा कोट में कल हुई बस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। नेपाल पुलिस मुख्यालय ने आज इस दुर्घटना की जांच के लिए नेपाल पुलिस प्रदेश कार्यालय कावरे के एसएसपी कमल थापा के संयोजकत्व में 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में स्थित सीमा स्तंभों के संरक्षण, मरम्मत तथा पुनः निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से दोनों देशों के अधिकारियों के बीच झापा के बिरता मोड़ में संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न हुई। नापी विभाग सीमा शाखा काठमांडू के आयोजन में हुई इस बैठक में पूर्वी नेपाल के झापा, इलाम, पांचथर और ताप्लेजुंग से जुड़े सीमा क्षेत्रों में संचालित फील्ड कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। हाल ही में संपन्न इस बैठक में संयुक्त टीम ने पिछले 3 महीनों में किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए मरम्मत किए गए तथा पुनर्निर्माण की आवश्यकता वाले सीमा स्तंभों के बारे में जानकारी दी। सूचना एवं संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि कला, साहित्य, भाषा और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की शक्ति और पहचान का आधार होती है, इसलिए इनके संरक्षण और संवर्धन के बिना समृद्धि अधूरी रहती है। आज गोरखापत्र संस्थान द्वारा आयोजित मधुपर्क सम्मान 2083 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में भौतिक संरचना और आर्थिक सूचकांक के विकास के साथ साथ भाषा, साहित्य और संस्कृति का सुदृढ़ विकास भी समान रूप से आवश्यक है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मंत्री खड़गराज पौडेल ने कहा है कि नेपाल को आरोग्य पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। विश्व आरोग्य दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पौडेल ने कहा कि आगामी 10 वर्ष को आरोग्य दशक के रूप में मनाने की तैयारी हो रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान मध्य पूर्व के युद्ध को समाप्त करने के लिए अगले 24 घंटों के भीतर एक समझौता कर सकते हैं, ऐसा प्रमुख मध्यस्थ पाकिस्तान ने कहा है। क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कई महीनों से जारी इस युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने नई झड़पों के बावजूद संघर्षरत पक्षों और मध्यस्थों ने दावा किया है कि लंबे समय से प्रतीक्षित समझौता अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद शांति समझौते के लिए कई सप्ताह तक वार्ताएं चली, लेकिन अब तक कोई अंतिम सफलता नहीं मिल सकी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये समझौता केवल युद्ध विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि व्यापक सहमति के काफी करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज एक्स पर लिखा, पहले की तुलना में अब कई अधिक मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और हम स्थायी शांति के लिए समझौते के बहुत करीब है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एक वर्ष के भीतर 1040 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने का ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार आगामी वर्ष 8 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से नेपाल स्वच्छ वायु एवं समृद्धि परियोजना करेगी लागू। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और निर्माण सामग्री के महंगी होने से सुदूर पश्चिम के सड़क परियोजनाएं हुई प्रभावित और अमेरिका और ईरान के बीच आज समझौता हो सकता है, प्रमुख मध्यस्थकर्ता पाकिस्तान का कथन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: फोर्जी LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4G गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE ब्यान्ड 20 800 मेगाहर्ज र VoLTE सपोर्ट गर्ने यकिन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
2: अनन्त सम्भावनाको पुञ्ज, गतिशील मानव जीवन, कर्मशील सारा संसारका नेपाल र नेपाली मन।

का पात जोबन भाई गो घटाई जुबाई गो साल का पात जोबन भाई गो घटाई छुट भैर छुट्टी नाई बाई।

सार यह गोविंद राधे, मन राधे रूप, मुख राधे राधे गादे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, ये चारे वेद का वास्तविक निचोड़ ज्ञान भने को मनले भगवान को स्मरण भक्ति गर्नु हो र मुखले उन्हें को गुणगान गर्नु। इसी द्वारा नै जीव को अंतिम लक्ष्य आनंद प्राप्ति संभव होने। अद्वितीय ग्रंथ राधा गोविंद गीत को यो सुंदर दोहा का साथ युगल सरकार में सभक्ति वंदना गर्दै कार्यक्रम अध्यात्म संदेश का आदरणीय श्रोताहरुमा राधे राधे। आदरणीय श्रोताहरु, गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान नाम को महिमा बताउँदै आफ्नो रामचरितमानसमा बताउनुहुन्छ, कलि नहीं धर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। आउनुस इस प्रकार को महात्म्यलाई हृदयंगम गरी कार्यक्रम को शुभारंभ गरौं यो सुमधुर नाम संकीर्तन।